0: Bad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UAE वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। YBFM 105.4, the UAE's number one desi music station.

0: चाय गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शारजील।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
2: ना दे दिल पर देसी नू तन्नत दारूना।

0: शर्जील
1: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली फ्रॉम 6 AM टू 11 AM
2: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।
3: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

मसाला, दुबई की मस्ती, सुबह यूएई वाली मैडनेस, देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: हुक जो बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए
0: एनर्जी बोले वाइब एफएम 105.4

शारजहां से शाम तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर। देसी सॉन्ग ऑफ द आवर ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: शर्जील।
1: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, फ्रॉम 6 AM टू 11 AM,
2: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: Bad Mornings with RJ Shrujil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrujil. मस्ती, madness और full on देसी vibe. सुबह UA वाली, madness देसी वाली. Only on Vibe FM 105.4.

0: मूड बोले झुमका किरारे रेडियो बोले
1: झुमका
0: YFM 105.4 UAE का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब FM 105.4, the UAE's number one desi music station.

चाय की पहली सिप टू ऑफिस की लास्ट ओवर स्पीड, सुबह यूएई वाली मैडनेस, देसी वाली मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील।

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE।

शारजहां से शान तक, ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। YBFM 105.4, the UAE's number one desi music station.

0: Love Song of the Hour on Vibe FM 105.4.
1: बॉलीवुड का मसाला दुबई की मस्ती, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब मॉर्निंग्स रहेगा एकदम मैड.
1: सुबह का बिगेस्ट सीन शुरू हो चुका है. मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील, मस्ती, मैडनेस और फुल ऑन देसी वाइब. सुबह यूए वाली मैडनेस, देसी वाली, ओनली ऑन वाइब FM 105.4.

Gold Rates. Only on Vibe FM 105.4. ये था आज का गोल्ड रेट ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4 पर।

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। YBFM 105.4, नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

हवाई गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शारजील।

बोले झुमका किनारे रेडियो बोले झुमका 105.4 UAE का नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब एफएम 105.4 द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Bad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब mornings रहेगा एकदम mad.
1: सुबह का biggest scene शुरू हो चुका है. Mad Mornings with Shrijil. मस्ती, madness और full on desi vibe. सुबह UAE वाली, madness desi वाली. Only on Vibe FM 105.4.

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

शारजहां से शाम तक ये है मैड मॉर्निंग्स विद शार्जिल सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800 Dugasta now. Dugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: गया दुबई की मस्ती, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली। मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।
1: करेंसी चेक मेड इजी ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।
2: ये था आज का एक्सचेंज अपडेट ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

बातें अपने गाने अपने लोग YBFM 105.4 The UAE's number one Desi music station.

0: Mad Mornings with RJ Shrijil, only on Vibe FM 105.4. अब मॉर्निंग्स रहेगा एकदम मैड.
1: सुबह का बिगेस्ट सीन शुरू हो चुका है. मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील, मस्ती, मैडनेस और फुल ऑन देसी वाइब. सुबह यूएई वाली मैडनेस, देसी वाली, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4.

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक YBFM 105.4।

चाय गरम, जोक्स शरारती और गाने फुल्ली फिल्मी। सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली, ये है मैड मॉर्निंग विद शारजील।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। YBFM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE।

0: शर्जील
1: मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील सुबह UAE वाली मैडनेस देसी वाली फ्रॉम 6 AM टू 11 AM
2: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800 Dugasta now. Dugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: अलार्म बंद करो क्योंकि यूएई का बिगेस्ट ब्रेकफास्ट शो आ गया है मैड मॉर्निंग विद शर्जील आपका असली वेकअप कॉल सिर्फ वाइब एफएम 105.4 पर

0: सोशलाइट्स।
1: बॉलीवुड का तड़का यूएई का प्यार बस यही मिलेगा। वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: बोले
1: झुमका गिरा रे
0: रेडियो बोले
2: झुमका
0: YFM 105.4 UAE का नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब FM 105.4, the UAE's number one देसी म्यूजिक स्टेशन।

मसाला दुबई की मस्ती, सुबह यूएई वाली मैडनेस देसी वाली। मैड मॉर्निंग्स विद शर्जील ऑन वाइब एफएम 105.4।

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

मस्ती की रेलगाड़ी देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4। समय का सही हिसाब वाइब के साथ। टाइम चेक ऑन वाइब एफएम 105.4। टाइम चेक हो गया, अब म्यूजिक का टाइम शुरू। स्टे ट्यून्ड टू वाइब एफएम 105.4।

0: देसी एक्सप्रेस विद तैयब, देसी बीट्स, यूएई स्ट्रीट, 11 AM to 3 PM,
1: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।
2: Oh yeah.

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब FM 105.4।

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। YBFM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: चुपोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए।
0: एनर्जी बोले वाइब एफएम 105.4।

देसी बीट्स यूएई स्ट्रीट्स तैयब के साथ ओनली ऑन देसी एक्सप्रेस। देसी बीट्स फुल हीट ओनली ऑन वाइब एफएम।

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड, बस बजाओ वाइब पे फिल्म 105.4।
1: Attention please, next stop, Days Express with Taya.

शरारत का स्टेशन, मस्ती का डेस्टिनेशन, देसी एक्सप्रेस विद तैयब, सिर्फ वाइब FM 105.4 पे।

0: दुबई और उसके अतराफ में आजान जोहर का वक्त हो चुका है।
1: अल्लाहु अकबर, अल्लाह

मस्ती की रेलगाड़ी देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4। जैम्स हो या क्लियर रोड हम बताएंगे। ट्रैफिक अपडेट ऑन वाइब एफएम 105.4। ट्रैफिक का सीन क्लियर। म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन वाइब एफएम 105।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800-DUGASTA now. Dugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE।

0: रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजो वाइब पे FM 105.4 वाइब FM
1: अटेंशन प्लीज नेक्स्ट स्टॉप
2: Day 6 Express with Tayyar.

शरारत का स्टेशन, मस्ती का डेस्टिनेशन, देसी एक्सप्रेस विद तैयब, सिर्फ वाइब FM 105.4 पे।

0: यार सोने
1: शाइनिंग ब्राइट योर डेली गोल्ड अपडेट ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4। ये था आज का गोल्ड रेट ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4 पर।

0: देसी एक्सप्रेस विद तैयब, देसी बीट्स, यूएई स्ट्रीट, 11 AM to 3 PM,
1: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

बॉलीवुड का तड़का, यूएई का प्यार, बस यही मिलेगा। YBFM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन यूएई।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800 Dugasta now. Dugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.
1: Desi music station.

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
2: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा
2: बस चल

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
2: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय, लिख के दूं क्या?

0: रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
2: मूड बोले
3: झुमका किरारे,
2: रेडियो बोले
4: झुमका,
2: वाइब एफएम 105.4 यूएई का नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन।

हर स्टेशन पर मस्ती का स्टॉप देसी एक्सप्रेस विद तैयब ऑन वाइब FM 105.4।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। वाइब एफएम 105.4 द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: सुबह से रात तक मस्ती ऑन बोर्ड बस बजो वाइब एफएम 105.4 वाइब एफएम अटेंशन प्लीज नेक्स्ट स्टॉप
1: डेज एक्सप्रेस विद टैया।

शरारत का स्टेशन, मस्ती का डेस्टिनेशन, देसी एक्सप्रेस विद तैयब, सिर्फ वाइब FM 105.4 पे।

जब गाना हो मूड का तो स्टेशन सिर्फ एक वाइब एफएम 105.4।

गाने, गॉसिप और वही देसी कनेक्ट, यूई का अपना दिल। वाइब FM 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन इन UAE।

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10-on-10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years plus 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800-JUGASTA now. Jugasta Properties Vision 10-on-10, a smart move for higher returns.
1: सुबह का टिकट मूड का अपग्रेड वेलकम अबोर्ड यूएई का सबसे मस्त राइड देसी एक्सप्रेस विद तैयब ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: देसी एक्सप्रेस विद तैयब, देसी बीट्स, यूएई स्ट्रीट, 11 AM to 3 PM,
1: ओनली ऑन वाइब FM 105.4।

0: बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए।
0: एनर्जी बोले वाइब एफएम 105.4।

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.
0: Brought to you by Dugasta Properties.

0: और झुमका
1: केसरिया तेरा
2: केसरिया से लेके चलिया तक जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफएम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: hookup to karna. Your city, your vibe, and Sophie spinning the soundtrack.
1: Sounds good with Sophie on Vibe FM 105.4.
2: Clock in with the right vibe. Only on Vibe FM 105.4.
0: टाइम चेक हो गया, अब म्यूजिक का टाइम शुरू। स्टे ट्यून्ड टू वाइब एफएम 105.4।

right, everyone. A very good afternoon to all of you. Welcome to yet again another edition of Sounds Good with Sophie right here on YBFM 105.4 Joke UA, your number one desi music station. So here's the deal, okay? Just sit back, relax, take it easy, and let us entertain you. And it is, of course, Thursday. It is the 7th of May, 2026. And WhatsApp number bahut hi asaan hai. It's 050-879-105 for apne naam ke saath aur shahar ke naam ke saath. Anyhow, so today we are celebrating World Athletics Day. And then, you know, we have to talk a little bit about Make It in the Emirates, which has been trending. It's a fantastic campaign. I'm going to talk a little bit about that also. Usi se related aaj ek topic of discussion bhi hai. So apart from that, how was your day? Was it crazy? Was it hectic? Was it relaxed? How are you feeling? Garmi kafi hai. So please make sure that you keep yourselves hydrated and have all the seasonal fruits and vegetables, okay? Mujhe aisa lag raha hai ki main jis tarah बचपन में अपनी अम्मी की बातें सुनती थी, बेटा टाइम के ऊपर खाना खाना, ठीक है, पानी बहुत पीना और अपने फल जो है मिस नहीं करने. ना या मॉम श्योर वो एवर. एंड नाउ आई रियलाइज दैट यू नो एवरी सिंगल थिंग दैट आई पेरेंट्स यूज टू से, आर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू से, जो बड़े बुजुर्ग कहते थे, उसमें कितनी ज़्यादा एक सच्चाई थी. यू नो व्हाट आई मीन? बट एनी हाउ, सो होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल. आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम करण. गुड आफ्टरनून आरजे सोफी. गुड आफ्टरनून करण, हाउ आर यू डूइंग? एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल आई एम गोना बी डेडिकेटिंग अ सॉन्ग टू यू एज वेल. सो आई वांटेड टू स्टार्ट आउट द शो विद अ ट्रैक व्हिच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. सो you know, again, for me, if you talk a little bit about the early 2000s, you know, wo wala time jab hum log college mein, school khatam hua tha, phir naye naye college mein ja rahe the. So us zamane mein you had a lot of these Pakistani bands who were doing really, really well. So I remember Jal was one of those bands, one of my absolute favorites, of course. I even had Gohar Mumtaz over on the show so many times. And the first ever artist that I interviewed in my life, in my career, was Atif Aslam. So unka ek gana tha, ठीक है, वो गाना इतना फेमस हुआ कि एक बॉलीवुड फिल्म में उसका डिफरेंट वर्जन भी आया, फिर इसके रीमिक्सेस आए, हर क्लब में एक डिफरेंट रीमिक्स लगता था. बट आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग दिस वर्जन ऑफ द ट्रैक व्हिच आई क्लियरली रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू लव. सो पंप अप द वॉल्यूम, एंजॉय द म्यूजिक एंड टेक अ लिसन टू भीगी यादें.

पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ Sounds good with Sophie only on YBFM 105.4. 105.4.

right, everyone, a very good afternoon to all of you. Thank you so very much once again for texting in, for the feedback as well. Anyhow, so it's exactly 3:58 on the dial. She'll be with you all the way till 7 p.m. So coming up next, I do have the traffic updates. I've got the currency exchange rates. Hamare paas gold rates bhi hain. Kuch headlines hum aapko batayenge. But for now, how's the day shaping up so far? Hope that you guys are buckled up and driving safely as we speak. So 0508791054 par WhatsApp kar sakte hain apne naam ke saath aur shehar ke naam ke saath. And today I was thinking of a topic of discussion. Okay, so since the past few days, of course, you know, everyone was talking about Make It in the Emirates, and it was doing the rounds on the social media platform. So basically, agar aapko nahi pata wo kya hai, to basically it stands as, aap keh sakte hain ki UAE ka ek फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है एंड इट्स काइंड ऑफ डिजाइंड टू यू कैन से कन्वर्ट एम्बिशन इनटू प्रोडक्शन एंड डिलीवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट स्केल. ठीक है, तो ये जो है बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा इवेंट होता है बिकॉज इट्स होस्टेड बाय द यूएई मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो वो काफ़ी ग्रोथ और इनोवेशन की बात होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करते हैं मेक इट इन द एमिरेट्स में. बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन which is kind of related to not exactly the industrial part of it, but the learning part of it as a resident or as a citizen of the UAE. All right, so the question is, our topic of discussion rather, कि ज़िंदगी में आप बहुत कुछ सीखते हैं, खासतौर पर जब आप किसी नए शहर में जाएँ, किसी नए मुल्क में जाएँ, तो एक कल्चरल डिफरेंस भी होता है, फिर आप उसको अडेप्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो ट्रेडिशन हो, चाहे वो कल्चर हो, वो वाइब हो, फिर वो पॉलिसीज़ हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, फिर लोग हों, फिर दोस्ती होती है, फिर आपके काम के जो कॉलीग्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, यू नो, मैटर्स क्वाइट अ लॉट. बट इफ आई वुड आस्क यू दैट अमंगस्ट एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड हियर इन द यूएई सिंस यू केम हियर और व्हेन यू वर बॉर्न हियर, लेट्स सी, ओके, व्हाट इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी कि योर बिगेस्ट लर्निंग सो फार as far as living here in the UAE is concerned, right? What has this country taught you living in the UAE so far, amongst many things? 0508791054 is the WhatsApp number. Exclusively, सिर्फ UAE में रहने के बाद आपने एक चीज़ सीखी है. तो आज ये टॉपिक का डिस्कशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिग शाउट आउट टू सलीम, उस टेक्सटिंग इन, इज लाइक सोफी जी, माय वीकेंड हैज जस्ट स्टार्टेड आउट, बिकॉज थर्सडे से उनका वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज फ्राइडे को उनको छुट्टी होती है. एंड टेल मी कि क्या प्लान है आपके वीकेंड का. सलीम, आई वुड लव टू नो, लेट्स प्लग इन अ ट्रैक फॉर यू एज वेल. इनफैक्ट अगला गाना शायद आपको पसंद आया, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, बट जब यह गाना रिलीज हुआ था तो बड़ा हिट था एंड इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स बैक इन द डे बाय अ बैंड कॉल्ड यूफोरिया दैट आई यूज टू लव. एंड वी ऑल्सो हैव अब्दुल रहमान who's texting in, so big shout out to you. Good afternoon. I've got Arjun also who's texting in. Hi Arjun, thank you for your message. But for now, just pump up the volume and enjoy this beauty.

All right, everyone. A very good afternoon to all of you. Thank you so very much for texting in for the feedback as well. And it's about 4:10 on the dial. She'll be with you all the way till 7 p.m. Chaji, moving on. आज हमारा टॉपिक की डिस्कशन जो है वो है हमारे मुल्क UAE के ऊपर. ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी नए शहर में जाते हैं या किसी नए मुल्क में जाते हैं तो आपको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, बिकॉज यू नो वाइब इज़ डिफरेंट, द कल्चर इज़ डिफरेंट. यू हैव टू काइंड ऑफ अडेप्ट टू यू नो द गिवन सर्कमस्टांसिस अकॉर्डिंग टू द पीपल एंड द लीडरशिप एंड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट. सो या तो आप इस मुल्क में पैदा हुए, ठीक है, UAE में, यूर गल्फ बेबी, और यू शिफ्टेड हियर. सो मे बी इट्स बिन अ फ्यू मंथ्स फॉर यू, मे बी इट्स बिन अ कपल ऑफ इयर्स, मे बी इट्स बिन डेकेड्स, और मे बी यू वर बॉर्न हियर. बट यू नो द क्वेश्चन इज दैट व्हाइल लिविंग हियर इन द UAE, व्हाट इज दिस कंट्री एक्सक्लूसिवली टॉट यू? यानी कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी यहाँ पर रहते हुए एज अ रेजिडेंट, एज अ सिटीजन. मगर मुझे ये बताइए कि इफ आई वुड आस्क यू दैट यू नो जस्ट वन थिंग दैट एक्सक्लूसिवली दिस कंट्री हैज टॉट यू, यू नो व्हाइल लिविंग ओवर हियर इन द UAE, व्हाट हैव यू लर्नड दैट वन थिंग? टू लेट मी नो and share with all of us as well. 0508791054 पर आप अपने नाम के साथ और शहर के नाम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं. मुझे मैसेज आया है अब्दुल रहमान का, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट his favorite food item. You know, he's like, Sophie, मुझे इतनी पसंद है ये. And so he sent me a picture of lobia. You know, so rajma, I love rajma chawal. मैं बड़े शौक से बनाती भी, थोड़ी देर लगती है उसको, मगर बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ. पर वो जो होता है ना, वो जो वाइट लोबिया होता है, वो समा मुझे कभी इतना खास पसंद था नहीं. मगर इट काइंड ऑफ डिपेंड्स, बिकॉज इफ इट्स मेड रियली नाइसली और वो जो बड़े अच्छे मसाले के साथ बनता है, थोड़े से मेहनत के साथ बनता है, उसका टेस्ट, अगर इफ़ यू हैव द राइट टेस्ट and if you get it right, that's really yummy. But the pictures that you sent me, man, Abdul Rahman, aap jab pictures bhejte na, mere muh mein pani aa raha hota hai is time, because you know you kind of have a lot of those lawazmat saath saath, you know, which means a little bit of, you know, dahi and raita, then salad and all those dips and sauces, and at this point of time I feel so hungry. But nonetheless, thank you for texting and drive safely. All right, so what shall I plug in for you? I was thinking, it's been a while, I haven't plugged in this track. It has that emotional appeal. I think every single time I take a listen to it, and I think I can speak for most of us, not all of us, but most of us, that it does have an impact. Chahe aap iski melody ki baat karein, कॉम्पोजिशन की बात करें, सिंगिंग की बात करें, लिरिक्स की बात करें, फिल्म की बात करें, वीडियो की बात करें, देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस सॉन्ग. इट वॉज, इट इज़, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी फॉर अ वाइल. सो पंप अप द वॉल्यूम, टेक अ लिसन टू दिस ब्यूटी.

0: drive home, switch on, and let Sophie turn up the good vibes.
1: Sounds good
0: with Sophie on YBFM 105.4.
2: Hey, ऑफिस का स्ट्रेस सब धीरे धीरे कम, सनसेट के साथ मूड भी हो गया कम, सिग्नल पे रुक के भी लगता है राइट, गाना जो चले दिल

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.
0: Brought to you by Dugasta Properties.

0: ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब एफएम 105.4
1: देसी सॉन्ग ऑफ द आवर ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4

0: ये है यूएई का देसी साउंडट्रैक वाइबफ़म 105.4। इवनिंग का स्ट्रेस सोफी के साथ हो जाओ रिफ्रेश।
1: साउंड्स गुड
0: विद सोफी ओनली ऑन वाइबफ़म 105.4।
2: 105.4।

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.

0: दुबई की ट्रैफिक, इवनिंग का असली स्वैग और सोफी का म्यूजिक.
1: Sounds good
0: with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
2: 105.4.

All right, everyone, a very good afternoon to all of you. Thank you so very much once again for texting in for the feedback as well. Saleem कहते हैं मजे से voice note आया था जो मैं सुन रही थी. Saleem happens to be one of my regular listeners. हैदराबाद इंडिया से उनका ताल्लुक है और बड़े मजे मजे की चीज़ें जो है वो भेज रहे होते हैं, you know, related to specialties that has places as well. But nonetheless, he says, he feels very, very excited today because it's the start of his weekend. इनकी छुट्टी होती है फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन जो है वो वीकेंड होता है. तो यूजली, यू नो, ही इज आउट एंड अबाउट एंड ही इज हैविंग कड़क एंड देन ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट अ प्लान के क्या करना है वीकेंड के ऊपर. एंड देन ही सेंड्स मी पिक्चर्स ऑफ हिज वंडरफुल चिल्ड्रन एज वेल हु सेलिब्रेटिंग समथिंग और द अदर रिलेटेड टू, यू नो, इंडियन फेस्टिवल्स या कोई इंडिया के डे या समथिंग ऑफ द सॉर्ट. सो बिग शाउट आउट टू यू वंस अगेन सलीम, थैंक यू फॉर टेक्सटिंग इन. एनी हाउ, मूविंग ऑन. सो आज हमारे पास एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एज यूजुअल. एंड टुडे द क्वेश्चन इज दैट व्हाइल लिविंग हियर इन द यूएई, व्हाट इज दिस कंट्री एक्सक्लूसिवली टॉट यू? व्हाट हैव यू लर्नड व्हाइल लिविंग हियर इन द यूएई एज अ रेजिडेंट, एज अ सिटीजन? बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है किसी शहर से, किसी मुल्क से. मगर यह है कि अगर आपने एक्सक्लूसिवली कोई एक चीज़ सीखी हो हमारे मुल्क से तो वो कौन सी चीज़ होगी? सो लेट्स गो रीड सम मैसेजेस. आई गॉट अ मैसेज एंड दिस वन हैज़ बीन सेंट इन बाय राहुल. Rahul says, Sophie, for me, there's one thing that I've learned is time is money and it's not a thing. It is definitely a lifestyle. यहाँ पर मैंने definitely ये चीज़ जो है वो देखी है. And apart from that, you know, back home, हम हमेशा ये कहते थे कल कर लेंगे, you know, कल कर लेंगे, भी आज नहीं करना. But, you know, I've learned this thing over here that time is money. So 100%. All right, interesting. Thank you for texting in. Then I got a message from Sana. And Sana says, Sophie, I think UAE exclusively has taught me how to live with like 100 different nationalities and still smile every single day. And you know, we're all kind of Emiratis here, as they mentioned as well. All right, well, fair enough. You know, the one thing is that everyone has their own viewpoints and we kind of agree to disagree sometimes, and then we also have to respect each other's opinions as well. Priya ka message aaya hai. एंड प्रिया कहती है, सोफ़ी, मुझे एक चीज़ जो है ना वो सिखाई है इस मुल्क ने, देश ने, वो कह रही हैं, वो ये है दैट बिकॉज शी इज़ बेसिकली सेंट इन एन ऑडियो नोट, सो व्हाट आई डू इज़ दैट आई ट्राई टू काइंड ऑफ ट्रांसलेट इट फॉर यू गाइस. शी सेज़ दैट यू नो, टू कीप एवरीथिंग क्लीन एंड टाइडी इज़ नॉट अ चॉइस एग्जैक्टली, इट्स रिस्पेक्ट. So I think Dubai has kind of spoiled us. I cannot live without having everything spotless out on the streets or kisi ke ghar mein. It has to be, you know, spick and span for sure. That's fun. I kind of enjoyed that. Anyhow, 0508791054 is the WhatsApp number. Enjoy the music.

right, everyone, a very good afternoon to all of you. Thank you so very much for texting in for the feedback as well. Time ho chuka hai 5:02. She'll be with you all the way till 7 p.m. Achha, thodi deri pehle gaana maine chalaya tha jiska naam tha Pyari Pyari Do Akhiyan. It was a request and it was going out specially to Abdul Rahman because kaafi arse se wo chaah rahe the ki main gaana play karun. So I had specially downloaded this track and it was going out specially to you. I hope you enjoyed it. Anyhow, so moving on, as usual, we have a topic of discussion and today the topic of discussion is on our country, the UAE. And अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक नए मुल्क में जाते हैं या नए शहर में जाते हैं जैसे मैंने पहले भी बोला यू नो आपको अडैप्ट करना पड़ता है बिकॉज कीपिंग इन माइंड द कल्चर ऑफ दैट सिटी और द प्लेस एंड द वाइब एंड ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ कॉलीग्स दैट यू हैव द फ्रेंड्स दैट यू मेक द फैमिली दैट यू हैव द रूल्स एंड रेगुलेशंस द लीडरशिप यू नो एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अकॉर्डिंग्स टू द सिटी और द कंट्री दैन यू गेट टू पुट इन योर ओन फ्लेवर एंड गेट टू लर्न अ लॉट बट इफ आई वुड आस्क यू दैट एज अ सिटीजन एज अ रेजिडेंट ऑफ द यूएई व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दिस कंट्री हैज़ टू exclusively yani ki ek cheez jo aapne sirf isi mulk mein seekhi hai so let's go read out some messages I've got a message and this one has been sent in by let me see amit who's texting in as well hi amit how are you thank you for your message amit says sophie UAE has taught me how to balance desi culture with modern life I mean I still get to eat my biryani have my kadak okay while I still attend international events and I learn new skills and I think only dubai can give you both the worlds at the same time I always say that dubai is best of both the worlds for sure definitely anyhow we've got another message and this one has been sent in by I really like this one this is neha She says, Sophie, exclusive UAE ka lesson aapne poocha hai, toh wo ye hai that women can walk alone even at 3 a.m. without any fear. And from where I've come from, I feel like a queen over here. You know, this safety, I don't think I can ever get anywhere else in the world. I think as a woman myself, I can definitely relate to that, Neha. Big shout out to you. Thank you for texting in. Abdul Rahman has sent me a long voice note and he's expressed his feelings. He's like, Sophie, aapne ek cheez poochi hai exclusively. Itni saari cheeze hain jo ki hum bata sakte hain aapko UAE ke baare mein. मगर वो ये कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते रहें तो इवेंचुअली हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ ठीक है देर आर अपॉर्चुनिटीज़ देर इज़ ग्रोथ देर इज़ अ लॉट ऑफ सेफ्टी ऑल्सो ही वॉज लाइक यू नो मेरा एक्सीडेंट हुआ था कुछ देर पहले और कभी ये नहीं पूछा कि आप मतलब नेशनल हैं या आप जो है यहाँ से हैं नहीं बेसिकली उन्होंने जो है सबको एक ही जैसा ट्रीट किया क्योंकि जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर तो हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि वी आर जस्ट गोइंग टू बी गिविंग अ लॉट ऑफ दुआज to this country because of the amount of opportunities the growth and the safety the country has provided us with I think that's a beautiful message thank you so very much which reminds me of a headline that got my attention abhi breaking news aayi thi that UAE ने जी फॉर्म किया है कमिटी टू डॉक्यूमेंट द अग्रेशन एंड वॉर रिलेटेड डैमेजेस ओके सो व्हाट्स गोइंग ऑन इज दैट दिस कमिटी विल बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रजिस्ट्री टू सपोर्ट इंटरनेशनल लीगल अकाउंटेबिलिटी अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या है देर इज़ मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग अटैक्स एंड मिलिट्री ऑपरेशंस एंड असेसिंग ह्यूमन material and economic damage and then collecting and analyzing technical medical and forensic evidence and reports theek hai to ye ensure karenge ki jo integrity hai of the legal chain of the possession of evidence that's there so this is something that just was announced as far as the UAE is concerned a formation of a committee abhi ke liye enjoy the music

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4।

0: Your City, Your Vibe and Sophie spinning the soundtrack.
1: Sounds good with Sophie on Vibe FM 105.4.
0: इश्क का साउंडट्रैक आज बजेगा सिर्फ वाइब एफएम 105.4।

बर्थडे का दी एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

0: बर्थडे का द एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। Sounds good with Sophie, only on Vibe FM 105.4.
1: 105.4.

वर्कडे का द एंड, पार्टी का असली स्टार्ट सोफी के साथ। साउंड्स गुड विद सोफी, ओनली ऑन वाइब एफएम 105.4।

right, everyone. A very good evening to all of you. Thank you so very much once again for texting in, for the feedback as well. It's exactly 6:31 on the dial, which means in about another 10 to 15 minutes, I shall be signing out. And then Arshad Bhai would be taking over with his show called The Famous 7 to 11. Anyhow, so moving on, 050-879-1054 par WhatsApp kar sakte apne naam ke saath aur shehar ke naam ke saath. So aaj hamara jo ek टॉपिक की डिस्कशन है वो हम बात कर रहे हैं अबाउट लर्निंग्स. ओके, एंड वी टॉकिंग अबाउट लिविंग हेयर इन द यूएई कि एक्सक्लूसिवली हमने इस मुल्क से क्या एक चीज सीखी है. नाउ कुड बी एनीथिंग दैट यू फील लिविंग हेयर इन द यूएई हैज टॉट यू बट एक्सक्लूसिवली हेयर इन द कंट्री. एंड जस्ट अ वाइल अगो भावना वाज टेक्सटिंग इन एंड शी इज सो ब्यूटिफुल, यू नो, विद द वे दैट शी एक्सप्रेसेस हर इमोशंस एंड एवरीथिंग एल्स एज वेल. शी सेज सोफी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह यू नो इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस देर इज़ डेफिनेटली देयर. उसके बाद ये है कि इतनी ज़्यादा नेशनैलिटीज़ जो हैं वो इकट्ठे रहती हैं, इसकी वजह से बहुत सारे आई गेस यू नो यू गेट टू सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ फेस्टिविटीज़ ओवर हियर. यू गेट टू लर्न सो मेनी लैंग्वेजेस बिकॉज आई हैव लर्न सो मेनी लैंग्वेजेस हियर एज वेल. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट शी सेज दैट एवरीथिंग इज़ ओपन, यू नो, लेट नाइट एज वेल. यू गो टू यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, इट्स यू नो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड एंड ईट समथिंग. यू वॉन्ट गो टू पेट्रोल स्टेशन, देर इज़ यू नो द gas station is open, and so many other things as well which are open up. And then she talks about safety. She talks about the fact that as a nation, everyone loves doing charity. So there's a lot of humanitarian work over here as well. खास तौर पर अगर आप रमदान की भी बात करें तो नॉन मुस्लिम्स बहुत सारे एक्टिव होते हैं जो कि खास तौर पर वो इफ्तार बॉक्सेस देते हैं, चैरिटी देते हैं. दैट्स सो ट्रू भावना, यू आर एब्सोल्यूटली स्पॉट ऑन. एंड देन शी सेज that I think I would like to use two words, pure love. That's so beautiful, Bhavna. Thank you for texting in, for sharing that with us as well. A big shout out to you. And then she says, over the weekend, she has plans on watching Michael. You definitely should. In fact, you know what, Abhi, I think it was yesterday I put up a review on the social media platforms, and there is Sophia Anjum, S-O-P-H-I-Y-A for Sophia and A-N-J-A-M for Anjum. So, you know, I had 4 points. Number one, hands down, Michael Jackson is the greatest of all times. I mean, there is no denying the fact that he is, okay? Second of all, you know, there's a lot of nostalgia associated with it because, I mean, personally speaking, I grew up with his music. Watching his videos, listening to his music, तो एक nostalgia associated होता है, तो आप बड़ी personal एक touch होता है इस चीज़ के अंदर, तो people could relate to that. Third, I think that the current generation could relate to the human side of Michael Jackson, that he was misunderstood and the way that, you know, people treated him and how the world saw him. So I think that was very relatable with the current generation as well. And then Jafar Jackson, man, that guy as a first timer just nailed it, hit the ball out of the park, man. I mean, he definitely deserves an Oscar. However, having said that, I felt that a lot of things were missing. Just that Janet Jackson was not there because of legal issues or whatever the case was. And ending was so abrupt कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरवल आ गया, यू नो, बट आई जस्ट रियलाइज कि मूवी ख़त्म हो गई है. बट आई फेल्ट अमेजिंग वॉचिंग जफार जैक्सन डांस एंड बीट इट एंड यू नो बैड एंड ऑल दोज फेमस हिट ट्रैक्स लाइक बिली जीन. सो डेफिनेटली शुड गो हेड एंड वॉच इट. अभी के लिए टेक अ लिसन एंड एन्जॉय दिस बैंगर.

ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल. साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब FM 105.4.

0: ट्रैफिक जैम को बनाए म्यूजिक का स्टेडियम सोफी के साथ हर गाना एक गोल साउंड्स गुड विद सोफी ऑन वाइब एफएम 105.4
1: समय का सही हिसाब वाइब के साथ टाइम चेक ऑन वाइब एफएम 105.4।
2: और दोस्तों इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:03 हो रहे हैं, यानी अब यहाँ से मुस्कुराहटों के सफ़र की तरफ उड़ान भरने का वक्त हो गया है, जहाँ पर हम मुस्कुराएंगे भी और प्यार भरी बातें आप तक पहुँचाएंगे भी। तो फिलहाल आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। गुड इवनिंग।
1: टाइम चेक हो गया, अब म्यूजिक का टाइम शुरू। स्टे ट्यून्ड टू वाइब एफएम 105.4।
3: अरे सुनो दोस्तों, दुबई का नया फैशन नया शोर।

0: शाम की गुफ्तगु, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, द फेमस 7 to 10 विद सईद अरशद। सईद अरशद
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
2: यही तो गम है।
1: दोस्तों हम जर्नलिस्ट हैं और हमें लोगों से सवाल पूछने की एक आदत सी होती है, तो इसी तरह मैंने एक जगह बच्चों के ग्रुप में मैं गया और मैंने बच्चों से पूछा कि बड़े होकर आप क्या बनेंगे। तो एक बच्चे ने कहा कि आप क्या बनेंगे, तो मैंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी बड़ा हूँ। तो एक बच्चे ने कहा कि फिर कुछ बने क्यों नहीं। हाय मैं बेचारा, है ना।
3: Arshad has entered the building. Keep within reasonable distance from your radio set.
4: Vibe 105.4, number one desi music station. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम। सैयद अरशद having a license to chill है मेरा नाम। Believe me, I am a liar. है ना?

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

यूएई का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। वाइब एफएम 105.4, द यूएई'ज नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

0: Dugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus 100% buyback option. Visit Dugasta office today or call 800 Dugasta now. Dugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: Evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
3: यही तो गम है।
2: दोस्तों, शो की शुरुआत में ही मुझे एक बचपन का किस्सा याद आ गया। मैंने अपनी मम्मी से बचपने में पूछा कि मम्मी क्या मैं अडॉप्टेड हूँ, तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, अगर लेकर ही पालना होता तो कोई अच्छा सा ना ले लेते, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी। हाय मैं बेचारा, है ना।
4: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग अ लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अपने इस खुराफातों और शैतानी भरे शो में तबीयत पूरी तरह से ठीक ना होने की वजह से मैं शो के दूसरे लिंक में एक काम की बात करने लगा हूं। ये अलग बात है कि इत्तफाकन वो काम की बात बेहतर हो जाती है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था दोस्तों, तो मैं आते हुए ही आमतौर पर सोचता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि सैयद अरशद भी सोच सकता है, ये भी एक बहुत अच्छा जोक बन सकता है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि एक जगह मैंने एक जगह पढ़ा कि आँख ने एक पेड़ पर फल देखा और उसे लालच हुआ, लालसा उसमें जगी। आँख तो फल तोड़ नहीं सकती थी, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए और वो फल पेट में गए। और अब यहाँ से कहानी कुछ यूं बनी कि जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में गया। अब अचानक इसी हालत में माली ने देख लिया और एक मजबूत सा डंडा उसकी पीठ पर जड़ दिया, जबकि पीठ की तो बेचारी कोई गलती थी ही नहीं, है ना। अब जब डंडा पीठ पर पड़ा, दर्द हुआ तो आंखों से आंसू निकले, और इससे ये बात साबित हुई कि सबसे पहले जो फल आंख ने देखा था उसी आंख से आंसू निकले। यानी कर्म का सिद्धांत, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्म लौट कर आता है, जो हम करते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। अगर हम किसी के लिए अच्छा चाहते हैं तो हमारा भी अच्छा होता है। अगर हम किसी के लिए द्वेष या नफरत, हसद, बुगज, किनाह जो भी रखते हैं किसी के लिए, वो हमें फल की तरह वापस मिलती है। जो लोग दूसरों के लिए खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं वो खुश रहते हैं, और जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, नफरतें बांटते हैं, वो नफरतों की आग में सुलगते रहते हैं, जलते रहते हैं। अच्छी बातों की और मोहब्बतों की एक खास बात दोस्तों ये है, मैंने ये भी एक जगह पढ़ा था कि अगर आप एक गीली गेंद को दीवार पर मारते हैं तो गेंद आपके हाथ में वापस आ जाती है, लेकिन उसकी जो गीलापन है वो दीवार पर अपनी छाप छोड़ाता है। यानी अगर आप कोई अच्छी बात दूसरे को पहुंचाते हैं तो दूसरे पर तो उसका असर होता है, उस पर छाप पड़ती है, और वो अच्छी बात आपके पास वापस उसी शक्ल में या उससे और अच्छी होकर आपके पास आ जाती है। चलिए दोस्तों, आज तो इत्तफाक से बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब यहां से मुस्कुराहटों के सफर की तरफ उड़ान भरेंगे, लेकिन उससे पहले यादों को याद करेंगे, बचपने को टटोलेंगे, क्योंकि जब हम यादों को याद करते हैं तो इस तरह से यादों में खो जाते हैं कि दिल से मुस्कुराते हैं, और जिन लम्हों को हम जीकर आ चुके होते हैं एक बार फिर से उन्हीं लम्हों को जीवंत जी पाते हैं। तो मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। के होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, अब यहां से आप शुरू कर सकते हैं अपने खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम। व्हाट्सएप नंबर है 0508791054। और दोस्तों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी आई एम अ लायर, है ना।
1: शाम का स्टार्ट थोड़ा अजीबोगरीब खबरों के साथ, ये है शारजा से शुरू।

0: स्टोरीज, गॉसिप और थोड़ी मस्ती। अरशद के साथ शाम बनेगी कुछ खास।
1: फेमस, फेमस 7 to 10
2: विद सईद अरशद।

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development or call 0460205355 today.
1: Stories जो आपकी रात को यादगार बनाए. This is the famous 7 to 10 with Syed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
1: यही तो गम है.
2: और मुजफ्फरनगर के रहने वाले रमाकांत ने लिखकर भेजा है कि अरशद भाई, प्राचीन काल में इन दिनों हर व्यक्ति की बीवी मायके जाया करती थी. हाय हाय हाय, आपका दर्द है ना. कितनी मासूम सी ख्वाहिश है आपकी कि शादी भी करें और खुश भी रहें, है ना.
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन.
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम.
1: डिसिप्लिन हो या ड्रामा, ट्रेडिशन हो या ट्रेंड, ये है द असली जनरेशनल क्लैश, बाप वर्सेस बेटा.
2: और रमाकांत जी, अब तो मैं आपको सच बताऊं कि मैंने बहुत सारे लोगों को शादी के बारे में एडवाइस देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे शादीशुदा लोग मुझे देखकर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उनकी शादी मैंने ही जबरदस्ती करवाई हो, जबकि खुद फंसे थे. और बल्कि मैंने तो अपने कई दोस्तों को, दोस्तों शादी के वक्त जिस वक्त वो मंडप में बैठे थे या निकाह होने वाला था, उस वक्त तक भी मैंने उनको कहा कि भाई अब भी भाग लो, वक्त है, वरना फिर नहीं भाग पाओगे. लेकिन वो नहीं भागे, अब भुगत रहे हैं. और मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ. मेरी सगी छोटी बहन, उसकी जब शादी होने वाली थी तो मैं होने वाले बहनोई, जब वो अब तो बहनोई हैं, जब वो होने वाले बहनोई थे, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि शादाब साहब, मेरी जो बड़ी बहन है उसने अपने मियाँ को नाको चने चबवा रखे हैं, बहुत परेशान कर रखा है अपने मियाँ को, और ये छोटी वाली जो हमारी बहन है ये बड़ी वाली से भी तेज है, इसलिए अगर आप शादी करें तो अपने रिस्क पर करना. उन्होंने बेचारों ने शादी कर ली और अब जब भी मुझे मिलते हैं कहते हैं अरशद भाई, आपने तो मुझे समझाया था, मैंने ही गलती की. वैसे दोस्तों, आमतौर से मैं कई दिनों से आपको कह भी रहा हूँ, मैंने कल भी इत्तफाक से ये बात कही थी कि महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोनों का काम टेढ़े मेढ़े को सीधा करना होता है. इसलिए आमतौर पर यह होता है कि शादीशुदा लोगों को पत्नी की शक्ल में बहुत ही खूबसूरत सजा दुनिया में मिल जाती है. अब वो इसे बेचारे फिर भुगतते रहते हैं और देयर इज नो यू टर्न, बस सिवाय बर्दाश्त करने के और झेलने के, ऐसा मुझे शादीशुदा लोगों ने बताया है. चलिए दोस्तों, फिलहाल आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम. और दोस्तों, आप जारी रखें अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0508791054. और दोस्तों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट एंड बिलीव मी.

अपनी बातें, अपने गाने, अपने लोग। Vibe FM 105.4, the UAE's number one Desi music station.

0: हुक जो बोले
1: जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए।
0: एनर्जी बोले
2: वाइब एफएम 105.4।
3: म्यूजिक के साथ थोड़ी मस्ती और थोड़ी बातें। द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद।
4: देसी बीट्स फुल हीट ओनली ऑन वाइब एफएम।

0: ये है यूएई का देसी साउंड ट्रैक YBFM 105.4।
1: अरे सुनो दोस्तों, दुबई का नया फैशन नया शोर।

0: evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
1: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
2: यही तो गम है।
1: और आगरा के रहने वाले नौशाद अली ने लिखकर भेजा है कि अरशद भाई, मैंने एक जगह दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा कि दिन दिहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें, ताबड़तोड़ इंग्लिश बोलना सीखें, और उसके बाद उनका नंबर था। अब आप मुझे बताएं कि ये हो सकता है या नहीं।
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन।
1: वाइड एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।
0: शाम का स्टार्ट थोड़ा अजीबोगरीब खबरों के साथ, ये है शारजा से शुरू।
1: और नौशाद साहब, मैं तो आमतौर पर, अगर आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर आप रेलवे लाइन के ट्रेन से कहीं भी जा रहे हों, चाहे आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा रहे हों, आप रेलवे लाइन के किनारे बहुत सारे ऐसे ऐड देखते हैं जो आप कहीं नहीं देख पाएंगे, ख़ासतौर से वो कमज़ोरी वाले ऐड, आप समझ सकते हैं। और ये होता है कि ऐसा लगता है कि सारे उस तरह की बीमारी के लोग ट्रेन से ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। और एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा था कि आप 3 महीने में घर बैठे डॉक्टर बने। मैंने सोचा कि ये इतनी बड़ी रकम देकर, इतने साल कड़ी मेहनत करने के बाद जो डॉक्टर बनते हैं, वो घर बैठे कॉरेस्पोंडेंस के जरिए 3 महीने में घर बैठे डॉक्टर बने, घर बैठे इंजीनियर बने। और उसके बाद कई लोग उनके जाल में अभी भी फंस जाते हैं। और मैं अभी कुछ दिन पहले अपने दोस्तों को बता रहा था कि दोस्तों, अगर आपको हार्ट का, किडनी का, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराना है तो मुझसे रابطہ कर लें, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर ऑपरेशन करना सीख लिया है। अब आप देखते हैं ना कि औरतें जो हैं घरों में बैठती हैं, YouTube पर देखकर तरह तरह के खाने बनाने की प्रैक्टिस करती हैं, और उसके बाद उसका टेस्ट बेचारे अपने मासूम पतियों पर करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी टेस्ट को करने से पहले साइंटिस्ट लोग जो हैं उसका एक्सपेरिमेंट बंदरों पर करते हैं, ये बेचारी अपने पति देव महाराज पर करती हैं। उसके बाद फिर वो बेचारा, पति की तो हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो ये कहे कि अच्छा नहीं बना, वो तो कहेगा साहब बहुत अच्छा बनाया है, बल्कि YouTube वाले से भी ज़्यादा अच्छा बनाया है। ऐसी हालत हो जाती है बेचारों की, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, आप तो मुस्कुराइए, मेरा काम तो आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपके चेहरों को खिलाना है, थकावट को आपको भुलवाना है, और एकदम आपको तरोताज़ा करके घरों की तरफ भेजना है। क्योंकि मैं कहता हूं कि मेरी ये कोशिश, बल्कि ख्वाहिश, कि सबके सब गम ले लूं, हर होंठ पर मुस्कुराहट लिख दूं, क्योंकि मुझे हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल आप मुस्कुराइए और बैक टू बैक 3 गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर 1 देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। और दोस्तों, आप यूं ही जारी रखें अपनी शैतानी, अपनी खुराफात लेकर, अरशद का नाम 0508791054 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और आपको अपनी मेल आईडी की कसम है, आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। And yes, if you have any problem, please come to me. I will increase that and believe me, I am a liar. Hai na?

मूड बोले रेडियो बोले YFM 105.4 UAE का नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन।

गाने वही जो आप चाहें, वाइब वही जो दिल चाहे। Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station.

0: दुबई और उसके अतराफ में अजान इशा का वक्त हो चुका है।
1: अल्लाह हू अकबर, अल्लाह

0: Jugasta Properties is redefining the future with Vision 10 on 10, where growth meets opportunity. Now experience greater growth and guaranteed returns. Earn 10% ROI for 10 years with no service charges for 10 years, plus a 100% buyback option. Visit Jugasta office today or call 800 Jugasta now. Jugasta Properties Vision 10 on 10, a smart move for higher returns.
1: स्टोरीज जो आपकी रात को यादगार बनाए. दिस इज द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
1: यही तो गम है.
2: और नाजिम अली जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लिखते हैं कि अरशद भाई, आज मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि किसी नर्म मखमली सोफे पर बैठी होगी, किसी नर्म मखमली सोफे पर बैठी होगी, आजकल नागिन पिटारे में कहाँ रहती है. आपने दिल की तमाम भड़ास निकाल ली. और अगर मैंने ये मैसेज वहाँ तक पहुँचा दिया जिनसे आप डरते हैं, तो वो नागिन आप ही को डस लेगी. है कि नहीं.
3: एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन.
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम.
4: वार्निंग, पीवी ऑन ड्यूटी, हस्बैंड संभल जाओ, ये है पीवी अलर्ट.
2: और नाजिम अली साहब, मुझे भी एक पुरानी बात याद आ गई कि एक साहब ने पूछा कि मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद करनी चाहिए. तो गालिब साहब ने इसका जवाब दिया कि कभी भी करें, बस बीवी को पता नहीं लगना चाहिए. इतनी खतरनाक होती हैं ये पत्नियां, है ना. बल्कि आपने वो किस्सा पढ़ा होगा जो कि किताबों में, आपने बचपन के स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा, खासतौर से इंडियन हिंदी सिलेबस में, कि एक यमराज जी जो हैं कि पति को लेकर जा रहे थे और पति के पीछे पीछे उनकी पत्नी चली गई और फाइनली वो यमराज से अपने पति को छुड़ा कर ले आई. तो लोग कहते हैं कि इस कथा का सार ये है कि पत्नी से आपको कोई नहीं बचा सकता, यमराज भी नहीं. इसलिए पत्नी के ताप से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ पत्नी ही होती है. है ना गब्बर सिंह का डायलॉग. चलिए दोस्तों, फिलहाल आप मुस्कुराइए, बैक टू बैक तीन गीतों को अपने होंठों पर सजाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 टू 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम. और दोस्तों, आप यूं ही जारी रखें अपनी खुराफात, अपनी शैतानी लेकर अरशद का नाम. व्हाट्सएप नंबर है 0508791054. और दोस्तों, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज कम टू मी, आई विल इंक्रीज दैट, एंड बिलीव मी, आई एम अ लायर. है ना.

0: स्टोरीज, गॉसिप और थोड़ी मस्ती। अरशद के साथ शाम बनेगी कुछ खास।
1: फेमस, फेमस 7 to 10
2: विद सईद अरशद।

0: Welcome to Ocean Tower, where luxury meets lifestyle. Dive into Dubai's first ever lazy river ride inside your building. Play a round of mini golf, relax in the infinity pool with paddle tennis, outdoor yoga and sky lounges, offering breathtaking views you'll never want to leave. Just 800 meters from the beach and minutes from Dera Mall, your dream home awaits at Ocean Tower in Dubai Island by Ahmed Al Ansari Real Estate Development. Visit AAA Real Estate Development or call 0460205355 today.
1: शाम की गुफ्तगु, रात की कहानी और अरशद का नया अंदाज, The Famous 7 to 10 with Saeed Arshad. Saeed Arshad.
2: जी हाँ दोस्तों, हम हैं तो क्या गम है,
3: यही तो गम है.
2: दोस्तों पिछले लिंक में एक नाजिम साहब का शेर मैंने पढ़ा था और अब मुझे एक याद आ गया कि मोहब्बत में जो हर बीवी गज़ल का शेर लगती है, मोहब्बत में जो हर बीवी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का ढेर लगती है. आधा वर्ज़ है, आधा वर्ज़
4: है. एनर्जी का पावर हाउस यानी फन हमारे स्तन.
2: वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम.
1: वार्निंग, पीवी ऑन ड्यूटी, हस्बैंड संभल जाओ, ये है पीवी अलर्ट.
2: और दोस्तों एक साहब जिनका नाम है इरफान इलाही साहब, कहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन एक बात लिख रहे हैं कि अरशद भाई मेरे एक दोस्त हैं, उनके 17 बच्चे हैं और कल वो मुझसे कह रहे थे कि उनको बीवी का प्यार नहीं मिला. आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता प्यार मिल जाता तो, है ना. चलिए दोस्तों फिलहाल आप मुस्कुराते रहिए और यूं ही गीतों को अपने होंठों पर सजाते रहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं वाइब एफएम 105.4 नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन. शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद. आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम. सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम. और दोस्तों अब यहां से हम मुस्कुराहटों के सफर को विराम देंगे और अब हम यहां से मोहब्बतों के सफर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जहां हम मोहब्बत की गुनगुनी आंच को और दहकाते हैं, हुस्न को और हसीन बनाकर अपने दिल की धड़कनों को गुदगुदाते हैं, और जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे और महसूस करके उसको इस बात का एहसास कराते हैं कि हम फकत बस उसी को चाहते हैं.
4: यही है प्यार वाली मोहब्बत.

केसरिया से लेके चलिया तक, जो दिल में बस जाए वही बचता है। वाइब एफ एम 105.4।

का अपना देसी दोस्त, जहां हर गाना लगता है अपना। Vibe FM 105.4, the UAE's number one desi music station. Ishq ka soundtrack aaj bajega sirf Vibe FM 105.4.

0: evenings aren't about music, they're about conversations. Welcome to the famous 7 to 10 with Saeed Arshad.
1: Vibe FM 105.4, number one desi music station. Show ka naam hai The Famous 7 to 10 with Saeed Arshad. आपके होठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम। दोस्तों, शो का अब तीसरा घंटा शुरू हो चुका है जिसमें हम बातें मोहब्बतों की करते हैं, जिसमें हम हुस्न को और हसीन बनाते हैं, उसे और सजाकर और खूबसूरत बनाकर अपने दिल की धड़कनों को गुदगुदाते हैं, और जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे और इस बात का एहसास कराते हैं कि हम फकत उसी को चाहते हैं, उसके लिए जीते हैं और उसी पर मरना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि उलझे हुए हैं कब से एक ही सवाल में, उलझे हुए हैं कब से एक ही सवाल में, क्या हम भी आते हैं कभी तेरे ख्याल में। बैक टू बैक तीन गाने, गानों के उस पार मोहब्बतों के फसाने। तो सुनते रहिए वाइब एफएम 105.4, नंबर वन देसी म्यूजिक स्टेशन। शो का नाम है द फेमस 7 to 10 विद सैयद अरशद। आपके होंठों पर मुस्कुराहट लिखना है मेरा काम, सैयद अरशद हैविंग लाइसेंस टू चिल है मेरा नाम।